0: तपाईँ अहिले हेलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक फीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: कोई तुमसे बहुत प्यार करती है।
1: कौन मैम?
0: रिया। रिया बचपन से तुम्हें बहुत प्यार करती है, और तुम उसके प्यार को कभी समझे ही नहीं हो, हमेशा झगड़ते रहते हो।
1: सॉरी मैम।
0: चलो आज मैं तुम दोनों का प्यार

Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: अबरङ फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो
1: यरिहोला पर्खाल कदे जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी समक बसुगो अङ्क 91 रङ्गी र स्वागत मुला ना वियोग तामाङ तिग रङ दत्ते रङला लुइरी लागिरी तिग रङ दत्ते रङला लुइरी याकर्गी गेन पर्खालला सामना लवन मुस्युला याकर्गी पर्खाल जोसे रङदा सफलता यङबरी ग्याम काजिम मुला रङ फेदा नाचना माइवन मुस्युला थेला वरिपरि घुमप लवारी माइवन मुस्युला निराश बरबलन निबमुला तिग्द विषम जतिसुकै प्रयास लसै नन्तिगै एन आरिबा रङ नङ नङ मुस्युमुला परमेश्वर से यङला याकर्की थन्स्युबा योजना कादे छोना लवरी ज्याम काबला लागरी सैतान से यङला ग्यार्मी नुवालन पर्खाल कादे खडाला मुला थे पर्खाल कादे भौतिक ताबरी हमला थेनी गदेरी सरकारी अवरोध कादे आर्थिक कठिनाई कादे देन रङला शारीरिक स्वास्थ्य एन समावेश ताबरी हमला थे पर्खाल कादे मानसिक प्रकृतिला ताबरी हमला जहाँ रङ सफलता यङबरी आवश्यक आत्मनिर्भरला संघर्ष लावन मुस्युला थे पर्खाल कदे पार लवरी रङदा परमेश्वरला आवश्यकता तला रङ रङलन शक्ति प्रयोग लसी चु लवरी अहम अनुग्रहला कारण से थे परमेश्वरला स्रोत रङदेन छम छोना मात्र रि यङबमुला पहिलो योहन्ना 5:4-5 तिग्द विषम परमेश्वरला जम्मन कोलागा दिसे जम्बोलुङ थोरी डावरी खम्ला यङसे जम्बोलिङदा डाबचा यङला विश्वास ज्ञाम नोन हिन्ना खालसे जम्बोलिङ थोरी डखम्ला चु मिसे येसुदा जुन मिसे येसुदा परमेश्वरला जा हिन्ना बेसी विश्वास लला थेसे जे जम्बोलिङ थोरी डखम्ला यङसे सामना लजीबा बेनन पर्खाल कदे फेरि विजय यङबा परमेश्वरला प्रतिज्ञा लसुमुला थेन्दे थे विजय दाबी लसेला सूत्र विवा लारी परमेश्वर फेरि यङला भरोसा थन्स्युगो हिन्दा यहोसु 6 यरिहोल पर्खाललाई बारेरी याकर्गी कथा मुला थे पर्खाल गरे यहोसु देन थेला सेना र लागरी छिर्न लानन गेन देन बलिया मुबा परमेश्वर जी थेनी गदे त प्रत्येक दिन तिरम किल्लालाई वरिपरि घुमाव लाबरी निर्देशन पिन्सुजी देन 7 दिन री थेनी गदे से निस पटक चुला वरिपरि घुमाव लवारी घुमाव लवा दोबमुबा थेले छ पुजारी कदेसे रङला तुरही रङ बारी घुमाव लवर दोबमुबा थेन्दे बेनन निगदे क्रिन दोमुबा यहुसी 6:20 जब पुजारी कदेसे तुरही बेङजी तब मिगदे क्रिङजी देन तुरहीला आवाज न्यानबा बित्तीगन जब थेनी गदे गेन सोर्सी क्रिङजी थे पर्खाल ब्याङबा दोना घरलम्म ताइजी थेन्दे जम्मा नि रङला सिधान फेरि बढप्ताजी थेनी गदे बेनन सहरी वाङजी थेन्दे थे कब्जा लजी थेनी गदेला सफलतालाई चाबी तिग मुबा थेनी गदे से परमेश्वरलाई आवाज न्यान्जी परमेश्वर जी थेनी गदेदा जे लभरे सुमा मुबा थेनन लस्युजी थेन्दे थेले छ पर्खाल गदे नुपान लस्युजी थेनी गदेदा परमेश्वरला लस्युजी रङला प्रतिज्ञा पुरा लस्युजी कलसी 2:15 चुरङ लसी ख्रिस क्रुस ऋषि जम्मन शक्ति देन अधिकार यामा दे चुरङ लसी ख्रिस क्रुस ऋषि जम्मन शक्ति गदे देन अधिकार याङमा गदेदा ब्रेना लजी ओछे थेनी गदेदा जम्मलान अनछाङरी पेना लजी रङ देन ना नङरी याङला लुइला बेनन पर्खाल गदे हटाव लवरी वा नष्ट लवरी आदेश तिनबा क्षमता मुला जब परमेश्वर यसुदा शिवज्ञाम लुट प्लस युजी याङला नक्षरा बेनन पर्खाल गरे फेरि विजयलाई घोषणा लबमुबा जब याङ याङला लुइरी यसुलाई आज्ञा गरे न्यानमुला थेने पालन लाला पक्कन एन याङ दत्ते याङ द बाधा लजिबा पर्खाल गरे नुप्पमुला फिलिपी 4:13 ख्रिस्य पिन्ब शक्ति ज्ञान नोन नाइचु जम्मन तम लबरी खम्ला ख्रिस यसुरी रङदा पिन्न अधिकार द प्रयोग लसुगो ताकि रङसे सामना लसुब बेनन शारीरिक देन मानसिक पर्खाल गदे पार लवरी बाङ पिनबरी हमसुमुला यहुसु देन थेला सेनादा विजय पिन्सुबा थेनन परमेश्वर से राङदायन विजय पिन्सुला। आमेन। रङ्गिला जीवनले परमेश्वर से प्रशस्त आशिष पिन्सु गए।
0: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी निन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ।
1: कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353। धन्यवाद।
0: हस् त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
2: टाइम चेक इट्स 7 PM।
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।